किताब तीन बा के अंदर गुरु उन्होंने नाम का कमेंट कर दिया है बड़ी बाहरा जगता Thank you.